0: लोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sorry, I found it's studio time.
2: It's 4 p.m.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका पांच सोलु खुम्बू

0: उल्लू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: Sound check. City FM. Studio time.
0: It's 7 p.m. Start to start with it.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दूध को नगर पालिका पास सोलू खुम्बू

0: show internet अत्याधुनिक प्रगति को मुकाम पहले पटक वर्ल्ड क्लास इंटरटेनमेंट को आईपीटीवी सेवा प्रदान करने डिश हम इंटरनेट नेपाल को एकमात्र नेक्स्ट जेनरेशन वाईफाई 6 प्रगति भाई को वाईफाई 6 लॉकडाउन संग उत्कृष्ट जवाब प्रदान करने डिश हम इंटरनेट संफेद इंटरनेट टीवी व अन्य सेवा सजिले व्यवस्थित करने एवटा उपयोगी सेल्फ केयर एप माई डिश हम एप सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN
1: तपाईं सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलले विपदको समयमा आदेशको प्रतीक्षा

0: 信您说说传说欢迎留在
1: उपभोक्ता अधिकार को संरक्षण गरौं ग्रस्तरी वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं कारोबार में बिल विशोक लिने र दिने गरौं कारोबार पारदर्शी बनाऊ नाफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना बनाऊ वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा न्यास सही नीति गुणस्तर एक गरी खरीद बिक्री गरौं वस्तु व सेवा को प्रयोग कने हानि नुकसानी भय स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा गरौं भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता ठगी स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में

0: の人生をご参考にしてください。
1: उपभोक्ता अधिकार को उत्तम रक्षण गरौं। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं। कारोबार में बे दूषक लिने र दिने गरौं। कारोबार पारदर्शी बनाऊ। नाफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना बनाऊ। वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्यासी नीति गुणस्तर एक गरी मात्र खरीद बिक्री गरौं। वस्तु व सेवा को प्रयोग कुछ हानि नुकसानी भे स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं। वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति नगौ। निष्पक्ष तथा तथ्यपूरक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा गरौ। भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता ठगिएमा स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौ। आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय।